10,000 साल पहले कायनात को पैदा करने से, कोई भी चीज ना उस तकदीर से आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है, बल्कि जो कुछ किताब में लिख दिया गया और जो कुछ कलम ने लिख दिया उसी के नफाज, उसी के फैसले के मुताबिक हुआ, जैसे अल्लाह ताला पहले जान चुका था उसके मुताबिक। अल्लाह ताला तदबीर करता है अपनी मर्जी से, क्योंकि वही अकेला मालिक है पूरी कायनात का, वो कादिर है, वो काहिर है, वो इंसाफ करने वाला है, वो रहीम है, उसका मुल्क ताम है, उसमें कोई नुक्स नहीं है और कोई भी उसके मुल्क में शरीक नहीं है, ना कोई उसके उससे मुल्क छीन सकता है, ना कोई उसकी मुखालफत कर सकता है। तो अल्लाह ताला का तसरुफ और तदबीर अपनी मुमलकत में वो दो चीजों के बीच में है, या तो अदल है या एहसान है। जरा गौर करें, अदल और एहसान है, जुल्म कभी नहीं। वल्लाह अल्लाह ताला या तो अदल करता है या एहसान करता है और फजल है। देखें, गुनहगार को जब अल्लाह ताला माफ कर देता है ये क्या है? एहसान है। और जब गुनहगार को सजा देता है तो ये क्या है? अदल इंसाफ है। तो फिर जुल्म की बात कहां पर है? सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जुल्म नुक्स है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, हर नुक्स से पाक है। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्ध, सब्बह इस्म रब्बिकल अअला। ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग? पूरी कायनात तस्बीह करते अल्लाह ताला, और बार बार ये परिंद, ये दरिंद, ये दरख्त, ये पौधे, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला तो हर ऐब से पाक है, मेरा रब हर ऐब से पाक है, मेरा मालिक हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और यही जिक्र है इनका। यह तो हमने जान लिया। अब जो हक मालिक है उसी की इबादत करना फर्ज है। अब ये जान चुके अल्लाह ताला मालिक है और कैसा मालिक है। अब जब मालिक ऐसा है तो फिर इबादत में जिल्लत है, खुशू है, खुदू है, वो इस हक मालिक के सिवा किसी के लिए भी जायज नहीं है। और कुरान मजीद में जहां पर अल्लाह ताला ने मुल्क का जिक्र किया है वहां पर इफराद इबादत का भी जिक्र किया है। यह तुम लोग जान लिया कि अल्लाह ताला वाहिद मालिक है, फिर अब तुम पर फर्ज है, तुम यह भी जान लो कि तुम्हारा वाहिद महबूद ही वही, उसके सिवा कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर आयत नंबर 6 में, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ। ये इसलिए कि अल्लाह तुम्हारा रब उसी का मुल्क है, वो ही मालिक है। ला इलाहा इल्लाहू, उसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद बरहक नहीं, वही सच्चा महबूद है। फअन्ना तुसरफून, फिर तुम कहां फिरे जाते हो? कहां फिरे जाते हो कि क्या मतलब है? क्यों जाते हो किसी और की तरफ? क्यों अपने हाथ फैलाते हो? कोई हुबल के सामने, कोई लात के सामने, कोई उज्जा के सामने, कोई नबी के सामने, कोई वली के सामने, कोई फरिश्ते के सामने, कोई क्यों जाते हो कहीं पे? कोई या अली कहता है, कोई या हुसैन कहता है, कोई गौस कहता है, क्यों? फअन्ना तुसरफून, जब ये तुम लोगों ने जान लिया कि एक ही मालिक है तुम्हारा और उसी के हाथ में सब कुछ है, वही तदबीर करता है, वही रहम करने वाला भी है, वही मगफरत करने वाला भी है, तो फिर कहां जाते हो? फअन्ना तुसरफून। और सूरह मोमिनून आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, बुलंद है अल्लाह ताला जो हक मलिक है, बाकी सारे झूठे मलिक हैं, हक मलिक सिर्फ एक है। अल मलिकुल हक, फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, ला इलाहा इल्ला हु। दोबारा देखें, जहां पर अल्लाह ताला ने यह साबित किया मैं वाहिद मालिक हूं, हक मालिक हूं, वहां पर यह भी साबित किया फौरन, उसी को फौरन बाद अगले अल्फाज जो है, अगला जुमला जो है, ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला के सिवा, उसी के सिवा, उसी मालिक के हक के सिवा कोई मबूद बर हक नहीं। क्यों? रब्बुल अर्शिल करीम, क्योंकि वही रब अर्शिल करीम का मालिक है। सुभान अल्लाह, रब देखे ना, अर्शुल करीम, अर्श के लफ्ज क्यों इस्तेमाल होते ऐसे मायने में? सबसे बड़ी मखलूक अर्श है। पहाड़ देखें, जमीन देखी है, सूरज देखा है, देखा है, तारे देखे रात को चमकते हुए, गैलेक्सीज हमने सुनी है कि होती है कोई चीज, पूरी कह